0: is one of those children who, with your assistance, has the honour of being a Havis. And that too from only £29 per month. Help UKIM by sponsoring a Havis and get rewarded by up to 70 times blessings. For donations, call now or visit ukim.org.
1: रिश्ता नेटवर्किंग आज के इस मसरूफ और गहमा गहमी के दौर में रिश्ता ढूंढना किसी मुहिम से कम नहीं। ये एक मुश्किल काम है, लेकिन घबराइए नहीं। इंस्पायर एफएम रिश्ता नेटवर्किंग के साथ मिलकर कम्युनिटी के इस मसले में आपकी मदद के लिए अपनी खिदमात पेश कर रहा है। 11th of July बरोज हफ्ता दिन सुबह 11:30 से सहपहर 4:30 बजे तक क्रिसेंट हॉल बरी पार्क में सिर्फ खवातीन की निशस्तों का एहतमाम किया गया है, जिसमें आप अपने अजीज व अकारब के लिए रिश्ता ढूंढ सकेंगे। हमारे पास महदूद निशस्तें बाकी हैं, आज ही रजिस्ट्रेशन करवाइए और इस कार्य खैर में हिस्सा लीजिए। मजीद मालूमात के लिए विजिट कीजिए rishta-networking.co.uk। अपने जीवन साथी की तलाश, रिश्ता नेटवर्किंग और इंस्पायर एफएम के साथ।
2: एंड now, get ready for your new weekly dose of sports talk.
3: It's Sportscast, the show where we dive into the latest sporting events, the hottest debates, and the legacies that make sports unforgettable.
4: Join us every Monday at 7 p.m. as we break down the action, share our takes, and go head to head on the big sporting questions.
2: Sportscast, your new home for sports talk. Don't miss it.
5: From the studios of Inspire FM, the time is now 6 o'clock.

होशियार रहें। कुछ लोगों ने फ्रॉड का एक नया तरीका अपना लिया है। वो आपके घरों पर इंस्पायर एफएम और दिगर चैरिटीज के नाम पर चंदा मांगने आते हैं। इनको कुछ भी देने से पहले इनका आईडी कार्ड या फिर इस चैरिटी से राब्ता करके तसल्ली कर लें

0: कि कहीं आप गलत शख्स को रकम तो नहीं दे रहे। इंस्पायर एफएम कम्युनिटी अवेयरनेस मैसेज।
1: आई हैव

सामीने कराम, लुटन में आज भी मौसम गर्म है। सूरज अपनी पूरी आबोताब के साथ चमक रहा है। इसलिए अगर आप घर से बाहर हैं, काम पर जा रहे हैं या गाड़ी में सफ़र कर रहे हैं, तो अपने और अपने आले खाना की सेहत का खसूसी ख्याल रखिएगा। पानी ज़्यादा पीजिए, बच्चों और बुज़ुर्गों को धूप से बचाइए, और अगर आप सफ़र में हैं तो एहतियात से ड्राइविंग कीजिए। सामीन, मुहर्रमुल हराम हमें सिर्फ तारीख नहीं सुनाता बल्कि किरदार बनाना सिखाता है। यह महीना हमें याद दिलाता है कि ईमान, सब्र, अदल और वफादारी हर दौर में कामयाबी का रास्ता है। वाकया करबला हमें सिखाता है कि हक का रास्ता अख्तियार करने वाला वक्ती आजमाइशों से तो गुजर सकता है, लेकिन अल्लाह ताला के हाँ इसका मकाम बहुत बुलंद है। या अल्लाह, इस जुमे के सदक़े हमारे दिल को कुरान से जोड़ दे। हमें अपने महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत अता फ़रमा। अहले बैत अतहार और सहाबाए कराम की सीरत पर चलने की तौफीक अता फ़रमा। या अल्लाह, लुटन और पूरे बरतानिया में और पूरी दुनिया में अमन और सलामती अता फ़रमा। बीमारों को शिफा, परेशान हालों को आसानी, बेरोज़गारों को हलाल रोज़ी और नौजवानों को दीन और दुनिया की कामयाबियाँ अता फ़रमा। प्यारे सामीन, हमें अपने पैगामात ज़रूर भेजिए। बताइए आप लुटन के किस इलाके से बज़्म नात सुन रहे हैं। अगर आप जुमा की नमाज के लिए मस्जिद जा रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं या अपने आले खाना के साथ घर पर मौजूद हैं, तो हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और अपनी दुआओं में इंस्पायर एफएम को भी ज़रूर शामिल कीजिए, ताकि यह आवाज़ मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीन इस्लाम का पैगाम हर दिल तक पहुँचाती रहे। समीने कराम, अभी आपकी समातों की नज़र नात शरीफ के चंद अशार, उससे पहले दुरूद शरीफ।

ते फजल करे रब साई। समीन करम, अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे वालदेन को हमसे खुश रखे, अल्लाह पाक हमें मौत दे तो हम अल्लाह की याद में हों। समीन कराम, अभी आपकी समातों की नज़र कलमा शरीफ के चंद अशआर।

0: जिंदगी के राज, हवा की लहरों से बन के आवाज, ये है प्रोग्राम चराग। पेश किया जा रहा है हर जुमा शाम 7 से 8।
1: फ्रॉम द स्टूडियोज ऑफ इंस्पायर FM, द टाइम इज नाउ 4 o'clock।

0: Ali is one of those children who, with your assistance, has the honour of being a Hafiz. And that too from only £29 per month. Help UKIM by sponsoring a Hafiz and get rewarded by up to 70 times blessings. For donations, call now or visit ukim.org.
1: रिश्ता नेटवर्किंग आज के इस मसरूफ और गहमा गहमी के दौर में रिश्ता ढूंढना किसी मुहिम से कम नहीं। ये एक मुश्किल काम है, लेकिन घबराइए नहीं। इंस्पायर एफएम रिश्ता नेटवर्किंग के साथ मिलकर कम्युनिटी के इस मसले में आपकी मदद के लिए अपनी खिदमात पेश कर रहा है। 11th of July बरोज हफ्ता दिन सुबह 11:30 से सहपहर 4:30 बजे तक क्रिजन हॉल बरी पार्क में सिर्फ खवातीन की निशस्तों का एहतमाम किया गया है, जिसमें आप अपने अजीज व अकारिब के लिए रिश्ता ढूंढ सकेंगे। हमारे पास महदूद निशस्तें बाकी हैं, आज ही रजिस्ट्रेशन करवाइए और इस कार्य खैर में हिस्सा लीजिए। मजीद मालूमात के लिए विजिट कीजिए rishta-networking.co.uk। अपने जीवन साथी की तलाश, रिश्ता नेटवर्किंग और इंस्पायर एफएम के साथ।
2: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This is I am Khalid. You are tuned in to the Rise and Shine show with Tariq. Keep it locked.
3: Does your car sound like this on the school run? Want to change that? Then tune in to the Rise and Shine show with Brother T. Sing along to awesome nasheeds, answer our puzzling riddles, and tell us what you think of our newest events. The Rise and Shine show, every weekday from 7 a.m. to 9 a.m.
4: From the studios of Inspire FM, the time is now 5 o'clock.

0: ये कुछ के हाँ, इमाम शाफ़ी के हाँ और कुछ और के हाँ ये सजदे की आयत है, एहतियातन हम नमाज की ब्रेक में या अगली ब्रेक में आप लोग सजदा कर लेना। या अय्युहल्लज़ीना आमनू रुकऊ वस्जुदू वअबुदू रब्बकुम वफ़अलुल ख़ैर लअल्लकुम तुफ्लिहून। रुकू करो अहले ईमान, रुकू करो, सजदा करो, अल्लाह की इबादत, अपने रब की इबादत करो और अच्छे काम करो। चार चीज़ें कही हैं, रुकू, फिर सजदा, फिर अल्लाह की इबादत और फिर अच्छे काम। ये भी एक बड़ी फलसफी तरतीब है। रुकू, जब आप आंखों से देखते हो रुकू तो इंसान आधा झुक गया है, जब आप सजदा देखते हो तो वो पूरा झुक गया है, यही बात है ना। तो एक तरह से एक तरतीब है कि अल्लाह ताला ने हमें सिखाया है कि अपने अल्लाह ताला के सामने जब हम अपने आप को पेश करते हैं तो उसमें भी मराहिल होते हैं, यानी इंसान 100% एकदम से नहीं पहुंच जाता, उसको लतरकबुन्ना तबकन अन तबक, तुम एक मरहले से दूसरे मरहले की तरफ जाओगे। तो नमाज में भी वो मराहिल सिखा दिए, पहले इंसान खड़ा है, फिर आधा झुका, फिर पूरा झुका। और इसी तरह हम जब अल्लाह ताला की इताअत की तरफ आते हैं तो इसमें स्टेजेस होती हैं और हम ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला की इताअत की तरफ आते हैं। और ये यही दर्स नमाज की हरकात में से, बहुत सारे दुरूस में से एक दर्स ये भी है। तो ये तो आ गया इरकाउ वस्जुदू, लेकिन हम अगर रुकू और सजदे को मिलाएं तो यही तो असल इबादत है नमाज। लेकिन फिर उसके बाद किस चीज़ का जिक्र किया, वअबुदू रब्बकुम, लेकिन पहली दो बातें तो पहले ही इबादत थी, तो फिर इसके बाद इबादत का जिक्र करने की क्या हिकमत हो सकती है। उसके बहुत सारे जवाहर में से एक छोटा सा मोती ये है कि यहाँ पर अल्लाह कह रहे हैं कि अब जो तुमने सबसे आला इबादत कर ली ना, अब तुम बाकी जिंदगी में मेरी इबादत के लिए तैयार हो, अब इबादत शुरू होगी। रुकू और सजदा असल इबादत के लिए तुम्हें तैयार कर रहा है। यानी नमाज का टाइम हुआ, जोहर का टाइम हुआ, जाके मैंने नमाज पढ़ी, नमाज के बाद मैं वापस ऑफिस के काम पे लग गया, ऑफिस के काम पे किसी की गीबत हो रही है, ऑफिस के काम पे को कह रहा है जी आप बस ये कह दें कि डेडलाइन परसों है, हम सबको पता है आज है, लेकिन आप डेट चेंज कर दें मेरे लिए प्लीज़, अब बस भेज दें। खैर है, किसी की कॉल आ रही है उनको बता दो मैं ऑफिस में नहीं हूँ, वो कह रहे हैं कि वो ऑफिस में नहीं है। ये क्या है, ये अल्लाह ताला से इबादत नहीं है। इबादत का मकसद है कि जो हिदायत, जैसे नमाज में अल्लाह ने हिदायत दी है खड़े हो जाओ, खड़े हो जाते हैं, अल्लाह ताला हिदायत देते हैं रुकू में जाओ, रुकू में जाते हैं, अल्लाह कहते हैं पूरे गिर जाओ, पूरे गिर जाते हैं, जब खड़े होने का वक्त तो खड़े होने का वक्त, हर हरकत को कंट्रोल किया जा रहा है, आंखें कहाँ जानी है उनको कंट्रोल किया जा रहा है, सलाम किस तरफ करना है, पहले किधर करना है, पहले किधर करना है कंट्रोल किया जा रहा है, आपके अल्फाज को कंट्रोल किया जा रहा है। यानी आप मुजाहरा करते हैं कि अल्लाह जो जो इंस्ट्रक्शन, जो हुक्म मुझे देगा 100% मैं उस पर अमल करूंगा, जैसे जैसे कहेगा वैसे वैसे मैं करूंगा, मैं पूरी तरह अल्लाह ताला की इताअत करने के लायक हूं, मैं उसकी सलाहियत रखता हूं। और सब इकट्ठे वो हम करते हैं जमात से, यानी हम में से किसी में फ़र्क नहीं है, जो अल्लाह कह रहा है वो हम एग्जैक्टली कर रहे हैं, अपने जिस्म को हम सरेंडर कर देते हैं। आपको कॉल आ रही है उसके दरमियान, आपको आपका बॉस बुला रहा है, आपको कोई आपका फेवरेट मैच लगा हुआ है, आप खड़े हुए हो नमाज में, कोई आउट हो गया तो आप ये नहीं कहते ओए ओ यार अल्लाह अकबर, नहीं करता कोई भी, आप खड़े रहते हो नमाज में, आपकी ट्रेनिंग ऐसी है। तो नमाज क्या सिखा रही है कि अल्लाह ताला की जब इताअत होती है तो वो मुकम्मल होती है। अब जिंदगी में क्या होता है, कुछ मामलात में अल्लाह आपको कुछ ज्यादा छुट्टी देता है, आप खड़े हो, कुछ मामलात में अल्लाह ने ज्यादा मुतालबा किया है, जैसे क्या है रुकू, कुछ मामलात में अल्लाह ने बहुत ज्यादा मुतालबा किया है जैसे सजदा, आंखें कुछ, अब सजदा करता है ना इंसान, देखिए जब इंसान क़याम में खड़ा होता है ना तो अल्लाह ने हमारी आंखें ऐसी नहीं बनाई कि अगर आपने जायनमाज बिछाई हुई है तो आपको सिर्फ ये मुरब्बा नजर आ रहा है, अगर कोई बच्चा भागता हुआ जाएगा तो आपको वो भी नजर आ जाएगा, ऐसी बात है ना। लेकिन जब आप रुकू करेंगे तो आपके आपके नज़र के दायरे में कमी हुई कि नहीं, कमी आ गई ना, जब सजदे में गए तो नज़र कहाँ तक जाती है, बिल्कुल नहीं जाती, बिल्कुल आपका दायरा बंद हो जाता है। कुछ मामलात में औरों का अमल दखल है हमारी इबादत में और हमारी इताअत में, और लोग भी शामिल आ जाते हैं, लेकिन आपको उसको बर्दाश्त करके फोकस करना पड़ेगा, कुछ मामलात ज़्यादा ज़्यादा फोकस, और कुछ मामलात में किसी का कोई अमल दखल नहीं, वो बस आप खुद करो। उसकी मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ, मैं भी पढ़ा रहा हूँ, अगर मैं अल्लाह ताला के लिए पढ़ा रहा हूँ तो ये इबादत है कि नहीं, आप लोग पढ़ रहे हो, आप लोग कुछ सीख रहे हो, ये भी इबादत है कि नहीं, लेकिन इस इबादत में एक सोशल एलिमेंट भी है, हंसी मजाक भी है, हम एक दूसरे से बात भी कर रहे हैं, कोई आके कोई तारीफ भी कर दे, कोई फोटोज भी खींच ले, कुछ और भी कर ले, ये है कि नहीं? तो इसमें हमारे फोकस में इधर उधर बात हो सकती है कि नहीं? हो तो सकती है ना। तो इस फोकस के इधर उधर होने के बावजूद इंसान अपने आप को सीधा रखे, ठीक है, वो डिस्ट्रैक्शन आती हैं, लेकिन इंसान अपने आप को दोबारा फोकस पर लाता रहे, यही बात है ना। इसके मुकाबले में अगर जब हम नमाज पढ़ते हैं या किराअत करते हैं कुरान की घर में बैठे हुए, या तहज्जुद पढ़ते हैं, तो उसमें किसी और का अमल दखल है? बिल्कुल भी नहीं। अल्लाह ताला हमें तैयार कर रहा है कि हर तरह की सूरत हाल का हमें सामना करना है। अगर अल्लाह ताला चाहते ना कि हम दुनिया को छोड़ के बस अल्लाह की इबादत करें, तो शायद जिस तरह बुद्धिस्ट होते हैं या हिंदू होते हैं या और मजाहब होते हैं, जो आंखें बंद करके पहाड़ पे कहीं जाके बाकी सबसे दूर होके 6-6 घंटे बैठे रहते हैं ताकि वो कॉन्सेंट्रेट कर सकें। लोगों ने तो मुझसे आके ये भी पूछा है कि नमाज में आंखें बंद करके नमाज पढ़ने तो ज़रा कॉन्सेंट्रेशन आसान नहीं हो जाएगी? क्योंकि जब आंखें खोल के नमाज पढ़ते हैं तो आपका छोटा बच्चा है, वो नीचे से आके आपको ऐसे है, आप नमाज पढ़ रहे हो, जिसे आपको घूर रहे हैं आप नमाज। और ये ऐसा नहीं कर सकते कहीं किसी दूर कोने में किसी पहाड़ी पर जाके कहीं जाके, या अगर अल्लाह अगर आप इजाज़त दे दो मैं गाड़ी में जाके दरवाजे बंद करके सारे गाड़ी के फिर मैं नमाज पढ़ा करूं, या नॉइज़ कैंसिलेशन हेडफोन्स लगा के मैं नमाज पढ़ा करूं तब बाकी बाहर की आवाज़ ना। अल्लाह ताला ने हमें नमाज का हुक्म दिया, कोई मछेरा था उसने किश्ती पर खड़े होकर नमाज पढ़नी है, कोई किसान है उसने खेत में खड़े होकर नमाज पढ़नी है, कोई मजदूर है उसने मजदूरी में नमाज, कोई जंग के मैदान में उसने जंग के मैदान में नमाज पढ़नी है। यानी नमाज का जो ये सिलसिला है वो दुनिया को छोड़ के है कि दुनिया के साथ ही चल रहा है? दुनिया के साथ। मैं जब मैं न्यूयॉर्क में होता था, न्यूयॉर्क में क्योंकि रियल इस्टेट बहुत महंगी है, तो वहाँ पर जो रेस्टोरेंट खोलना हो अगर न्यूयॉर्क सिटी में तो वो तो ख्वाबों की बात है, बहुत ही महंगा है। तो वहाँ पर उन्होंने स्ट्रीट वेंडर्स बनाए हुए, वो ठेला लेके वो चलते हैं, उनको लाइसेंस मिलता है कि इस सड़क के इस कोने पे आपके पास लाइसेंस है, यहाँ पे आप बेच सकते हो। वो बहुत सारे हलाल वेंडर्स बने हुए हैं जगह जगह, हलाल हॉट डॉग्स, हलाल चिकन एंड राइस वगैरह वगैरह। तो वो सड़क पे लाखों की लोग में लोग गुजर रहे हैं, लोग उससे ख़रीद रहे हैं। तो नमाज का टाइम आता है तो वो क्या करता है बेचने वाला, वहीं पे उसने फुटपाथ पे जानमाज लगाई, आगे गैस की टंकी रखी, वहीं वो खड़ा नमाज पढ़ रहा है टाइम स्क्वायर के दरमियान में, इधर से उधर लोग गुजर रहे हैं और वो वहाँ खड़ा नमाज पढ़ रहा है। अब शोर है, शोर तो है, गाना बजाना है, बिल्कुल है, गाड़ियों की आवाज़ है, बिल्कुल है, लोग आपस में बातें कर रहे हैं, कोई बेहूदा बातें भी कर रहे हैं, वो सब कुछ है, लेकिन वो नमाज पढ़ रहा है, लोग ट्रेन स्टेशन में नमाज पढ़ रहे हैं। ये अल्लाह ताला का निज़ाम है कि हमें इस दुनिया का सामना करना है और फिर भी इबादत करनी है, ये ट्रेनिंग दी जा रही है हमें। तो जब ये कहा है ना वअबुदू रब्बकुम, अपने रब को मद्देनजर रखो, उसकी इबादत करो, ठीक है दुनिया का तो तुम्हें सामना करना ही है। तो ये ज़हनियत अल्लाह ताला ने हमारे दिलों से हमारे दिमाग से निकाल दी कि नहीं जी मुझे दुनिया से हट के मुझे दीन की खिदमत करनी है। ओ इंसान, हमारा दीन क्या है कि हम दुनिया का सामना करते हैं और दुनिया का सामना करते हुए हम दीन की खिदमत करते हैं, दुनिया से भाग के नहीं, दुनिया से हट के नहीं, दुनिया में रहते हुए दुनिया को एंगेज करते हुए। ये दीन तिजारत में गया, ये दीन सफ़र में लेके हम जाते हैं, ये दीन हम हर दुनिया के हर शोबे में हम इस दीन को साथ लेके जाते हैं, हम दुनिया के शोबों से भागते नहीं, उनको फेस करते हैं। लेकिन ये सब है कमिटमेंट हमारी अल्लाह ताला के साथ। उसके बाद एक आखिरी तरतीब में डाला वफ़ालुल खैर, और खैर किया करो, अल खैर करो। तो सवाल पैदा होता है कि पहले कहा था रुकू करो, वो खैर नहीं है? फिर कहा था सजदा करो, वो भी तो खैर है? फिर कहा था इबादत करो अपने रब की, वो भी तो खैर है? और अब क्या क्या कह रहे हैं, और अल खैर करो, खैर अल खैर करो। तो इससे मुराद ये है कि इन सब के बाद एक और मरहला भी है, और वो है सबसे बेहतरीन करने का काम, सबसे बेहतर अल खैर। खैर अरबी में कहते हैं अच्छे काम को, अल खैर कहते हैं बेहतरीन काम को, शर कहते हैं बुरे काम को, अशर कहते हैं सबसे बदतरीन काम को। जिसी तरह अस्मा तफदील में होता है अहसन बेहतर है, और अल अहसन बेहतरीन है, अकबर ज़्यादा बड़ा है, और अल अकबर सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है। तो यहाँ पर अल खैर से सबसे बेहतरीन काम करो, और सबसे बेहतरीन में बहुत सारे उलमा ने इस पर बहुत तदब्बुर किया कि ये क्या बात कही जा रही है।
1: और उसमें बहुत सारी राय है। जो एक राय मेरे दिल को लगती है औरों का मैं इनकार नहीं करता, वो ये भी है कि यहाँ पर अल्लाह ताला ने अल्लाह ताला की इबादत और खिदमत खल्क दोनों को मिलाकर बेहतरीन, यानी दोनों तरफ, एक तरफ आप एक नज़र आपकी इंसानियत की भलाई की तरफ है, उसमें दावत का भी काम है, उसमें इंसान की इस्लाह का भी काम है, उसमें फलाह का भी काम है, रिलीफ का भी काम है, तामीर का भी काम है, वो सारी चीज़ें हैं, और दूसरी तरफ अल्लाह ताला की इबादत भी है। अब ये सारी चीज़ें एक साथ हो गई तो एक क्लाइमैक्स तक आ गई ये बात, इरकाउ वस्जुदू वअबुदू रब्बकुम वफ़अलुल खैर लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम फलाह तक पहुँच जाओ। हुवल लज़ी ख़लक़कुम फ़मिनकुम काफ़िर वमिनकुम मुमिन, उसने तुम्हें बनाया और तुम में से काफिर भी हैं और तुम में से मोमिन भी हैं। और ये असल में एक दो हकीकतें हैं, दो मुतजाद हकीकतें हैं जो कुरान ने बयान की हैं। इंसान की असल है नूर, इंसान की असल है नूर,

नहीं है, उनके अंदर कुव्वत इरादा नहीं थी, सीरियसनेस नहीं थी, मेहनत का जज्बा नहीं था, सुस्ती थी, दिल नहीं था। टैलेंट तो है लेकिन सुस्ती भी है साथ में, तो टैलेंट का कोई फायदा नहीं होता जब सुस्ती हो साथ में। इसी तरह इंसानियत को सलाहियत तो दी गई हिदायत पर रहने की, हिदायत पर जीने की, लेकिन हमने इस मामले में सुस्ती दिखाई, यू नो कुव्वत इरादा नहीं दिखाई। तो इसलिए अल्लाह ताला ने जो अक्सरियत है उसका जिक्र पहले किया और कहा फमिनकुम काफिर वमिनकुम मुमिन। और ये हकीकत भी थी उस वक्त की कि जब अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल की, उसने तुम सबको बनाया, तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऑडियंस में अक्सरियत किन की थी? कुफार की या अहले ईमान की? कुफार की। फमिनकुम काफिर वमिनकुम मुमिन, वल्लाहु बिमा तअमलूना बसीर। दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट्स। ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، हमने किताब विरासत में दी उन लोगों को जिनको हमने खास चुना था हमारे बंदों में से। فمنهم ظالم لنفسه، तो जिन उम्मतों को चुना, जिन अहले ईमान को चुना, उनमें से भी बाद में, यानी मुसलमान होने के बाद भी ऐसे निकले जिन्होंने अपने साथ जुल्म किया। ظالم لنفسه यानी मुसलमान होने के बावजूद गुनाहगार होना, उनका पहले जिक्र। फिर कहा منهم مقتصد और उनमें से जो वो हैं जो एतदाल की राह लेते हैं, दरमियानी राह। मुख्तसिद, मुख्तसिद इसको भी कहते हैं जो इरादे का पक्का हो, मुख्तसिद उसको भी कहते हैं जो अदल व इंसाफ करे। अब अंदाज़ा करें गुनाह करने वाले ज़्यादा हैं या इंसाफ करने वाले ज़्यादा हैं? गुनाह करने वाले ज़्यादा, उससे कम कौन? इंसाफ करने वाले। और फिर आखिर में वमिन हम साबिकुम बिल खैरात, और उनमें से वो भी हैं जो खैर के अच्छे कामों में औरों से आके निकल जाते हैं, जो खुद ही से मोटिवेटेड होते हैं, जिनकी हम पहले बात कर रहे थे ना, मिनहुम साबिकुन बिल खैरात, वो सबसे कम तादाद में हैं। तो ज्यादा से कम की तरफ एक सीक्वेंस जा रही है। ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टडी थी। दो जुर्म हैं जिसमें अल्लाह ताला ने एक तरतीब, एक के लिए एक तरतीब, दूसरे के लिए उसकी मुतजाद तरतीब इस्तेमाल की है। चोर के बारे में कहा है कि मर्द चोर और औरत चोर, वस्सारिकु वस्सारिकतु फक्तअउ अयदीहुमा, उनका हाथ काटो, वस्सारिकु वस्सारिकतु, ठीक है। सूरतुन नूर में अल्लाह ताला ने जिना के बारे में कहा है वज़ानियतु वज़ानी, जिना करने वाली औरत और जिना करने वाला मर्द। तो जब चोरी की बात की तो किसका जिक्र पहले है? मर्द का, फिर औरत का। और जब जिना की बात की तो किसका जिक्र पहले है? औरत का और फिर मर्द का। इस पर हमारे उलमा के बहुत सारे तबसरे थे, लेकिन मैं चाह रहा था कि मैं इसमें कोई रिसर्च भी करूं इन दो जुर्मों के बारे में। तो मेरी मुलाकात हुई एक दफ़ा एक क्रिमिनोलॉजिस्ट से, जो क्रिमिनल बिहेवियर को पढ़ते हैं, क्राइम को स्टडी करते हैं, जुर्म को स्टडी करते हैं, उसकी डेटा एनालिसिस करते हैं, उसकी स्टेटिस्टिक्स पढ़ते हैं। तो एक क्रिमिनोलॉजिस्ट थी, उन्होंने अमेरिका में क्राइम को पढ़ा था पिछले 70 साल, पिछले 70 साल का डेटा क्राइम का, कि मुख्तलिफ किस्म के क्राइम, जैसे कार जैकिंग है, या होम इन्वेजन है, या किसी ने जो है वो पिक पॉकेटिंग है, किसी ने जो जेब कतराना होता है वो है, फिर प्रोस्टिट्यूशन है, इस तरह के जुर्म ना। तो वो एक सेमिनार में थी मेरे, वहाँ उनसे मुलाकात हुई थी, मैं इसी के बारे में बात कर रहा था और जो अकवाल हैं उलमा के मैं वो शेयर कर रहा था। आज मैं उनकी बात आपसे शेयर करता हूँ। सेमिनार के पास वो मेरे पास आती हैं, मुझे अपनी टेक्स्ट बुक, वो टेक्स्ट बुक पढ़ाती है यूनिवर्सिटी में, वो टेक्स्ट बुक खोल के उन्होंने मुझे दिखाई अमेरिकन क्राइम स्टेटिस्टिक्स की, और कहती हैं कि जो रॉबरी और स्टीलिंग, होम इन्वेजन, इस किस्म के स्टीलिंग वाले, चोरी वाले काम, उसमें 98% मर्द हैं, 98% मर्द हैं और 2% औरतें। और उसमें भी लोगों ने बहुत एनालिसिस किया है ऐसा क्यों है, वो क्यों है? क्योंकि उसमें पकड़े जाने का रिस्क ज़्यादा है, फिजिकल हार्म का रिस्क ज़्यादा है, और मेन जो है वो फिजिकल रिस्क ज़्यादा लेते हैं। दूसरी तरफ प्रोस्टिट्यूशन से मुतालिक केसेस में 96-97% कौन है? फीमेल्स हैं जो अरेस्ट होती हैं, जिनको पकड़ा जाता है। वो ज़ानियत हो वज़ानी, हमारे उलमा कहते हैं कि अल्लाह ताला ने मर्द को और औरत को दो मुख्तलिफ किस्म की ताकतें दी हैं। इंसान को, मर्द को फिजिकल ताकत दी है
और औरत को जज्बाती ताकत दी है, वो साइकोलॉजिकली उसको पावर दी।